0: हजारों दिलों की धड़कन आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाजरीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमती नौयत के होंगे और इन सब मौजूदात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेडियो पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। क्योंकि आज का हमारा जो सारा प्रोग्राम है वो बाबा जी हाजी गुलाम मुस्तफ़ा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे उसके बारे में है, लेकिन बीच में हमारा जो आधा घंटा है इसमें हम डेनमार्क की सियासत में जो हंगामा हो रहा है उस पर बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। नसर भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
3: जी बिल्कुल आ रही है।
2: शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, जैसे आपको पता है कि आज हमारे पास ज़्यादा प्रोग्राम हुआ है बाबा जी के बारे में है, लेकिन ये जो आधा घंटा है आपका मेरा जो बाशी के संग प्रोग्राम है इसमें डेनमार्क के बारे में आप कुछ राय लेंगे। सबसे पहले तो यह कि अभी तक हुकूमत नहीं बनी और डेढ़ महीना हो गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया है। और जो सबका वज़ीर आज़म मेते फेडरसन है, उन्होंने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ़ पार्टियों को मिलाने की, उनकी बातें सुनने की और उनको इकट्ठा करने की, लेकिन वो बात बन नहीं रही। और उसके ऊपर एक बम फटा, वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा साहब का वज़ीर ख़ारजा जो हैं लास्लो के रासमुसन, पहले तो वो शुरू से जो है मेथे फेडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, अभी एकदम उन्होंने अपना पंतरा चेंज किया है और उन्होंने जो है कहा कि वेंसरा पार्टी जो है जो एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी उसको जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश करें। तो ये जो बम फोड़ा गया है और ये जो अभी नेगोशिएशन कल वेंसरा पार्टी के चेयरमैन जो हैं थ्रोलुन पॉल्सन वो शुरू करेंगे, तो ये एकदम जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सामईन को बताइए।
3: जी यानी बताने को तो कुछ आपने छोड़ा ही नहीं, सब कुछ आपने बड़ी अजीब सी और बड़ी खुश नुमा आपने ये समरी पेश कर दी।
2: जी।
3: आपने देखा है कि पिछले चंद हफ्तों से हुकूमत साजी के लिए मौजूदा कायम मुकाम वज़ीर आज़म जो हैं वो शाही मशीर के तौर पर काम कर रही थी कि नई हुकूमत बनाने के लिए कि वो पार्टियों में किसी एक नुक्ते पर इतहार कर ले और नई हुकूमत बन जाए।
2: अच्छा,
3: लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि साबिक वज़ीर ख़ारजा जो थे वो साबिक नहीं है, अभी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं।
2: कायम मुकाम है,
3: कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं।
2: जी जी।
3: और लास्ट के खास मौसम जो कि खुद भी वज़ीरे पर जिम्मेदारियाँ अपनी निभा चुके हैं, उनकी खामोशी और उनका पैंतरे बदलने का अंदाज मेटे फेडरसन के साथ अच्छा नहीं रहा था और कई जगह कई मौक़ों पर तो वो इंतहाई शिद्दत पसंद दिखाई दे रहे थे अपने मौक़ पर। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है, जो सियासी पैंतरा बदला है
2: जी,
3: या गिरगट ने रंग बदलने शुरू किए हैं, तो लासो के वासमुसन को भी मालूम हो गया है कि उनकी ये हठधर्मी जो है ये ना तो

0: fiind fără, garul curonului ce trebuie o cățiu o dată. Eu o dată. Deci e de loc un pasit mat găsete, că și copii, că mi-i coi moca așa de mila, că vă baba zice zaț, că vă umri în față, ea un pasit, așa că amare, ha, așa că vă hot. Bă, că sunt zice, e brazării mea, e crăvaj păcăt cu aia, că bine de ce, bine ce, ce, bine te afic, că e înzam brazării.
1: अच्छा नसर भाई, आपने उर्दू सीखने की बात की है और नौजवान लोगों के लिए, मैं आपको बताता हूँ, बाबा जी जो है ना वेल्देमार गैरे में रहते थे एक ज़माने में ना, रजा दुरुस्त है, तो मेरा ऑफिस जो था वहीं पे था, तो मैं कई दफ़ा जब निकलता था तो बाबा जी नज़र आते हैं, तो मेरी उनसे वो बातचीत नहीं थी, बहुत पुरानी बात है आपकी, तो एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे पंजाब में कह दिए तुम कितने चल रहे हो, तो मैंने कहा जी मैं अभी दफ्तर से आया हूँ, तो कहते हैं तुम वहाँ करते हो, मैंने कहा हाँ जी, तो कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारा रेडियो का प्रोग्राम है तो उधर क्यों नहीं आते तुम, तो मैंने कहा जी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके रेडियो पे आके जो है ना वो कोई प्रोग्राम करो, तो मुझे कहने लगे तुम आओ, जो कुछ कहना चाहते हो कहो, तुम्हारी उर्दू खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आप यकीन कीजिए शौकत भाई कि मैं जब प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पे, पहले तो इंटरव्यू वगैरह, लेकिन जब वाकई प्रोग्राम शुरू किया तो वो जो उर्दू हमने बचपन में सीखी हुई थी या वो जो बोलते वो सारी उम्र के जो है ना वो आ गई सारी,
2: बिल्कुल
1: और वो इंग्लिश डैनिश पीछे रह गई, और उर्दू के कई अल्फाज जो हैं वो अब पहले आते हैं और इंग्लिश और डैनिश के बाद में आते हैं वहाँ पर। तो ये मेहरबानी एहसान बाबा जी का है कि मैं अब उर्दू लिख भी लेता हूँ।
2: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो नसर साहब एक बात कह रहे थे, जब इन्होंने रेडियो ज्वाइन किया तो बाबा जी को इन्होंने ख़तरात से आगाह किया था कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है, ये बात सुन के मुझे ऐसे लगा, देखें शायद हम सब भी यहाँ मिल के बैठे ही इसीलिए हैं कि हमारी और बाबा जी के अफकार में बहुत ज़्यादा मुमासलत थी, क्योंकि जब मैंने भी यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे भी यही कहा गया था कि इस रेडियो पे मत जाओ, यहाँ पे बाशी और नसर हैं, तो मैंने कहा जनाब आप इस बात की फ़िक्र ना करें, अगर आप सिर्फ ये कहें मैं इस वजह से रेडियो ना ज्वाइन करूँ, मैं उनके साथ जा के बैठूँगा और उनके साथ जा के काम करूँगा, तो बाबा जी ने भी वही बात की, तो मैंने समझा ये शायद हमारे साथ मिल बैठने की एक वजह ये थी कि हमें ये नज़रियाती मुमासलत पाई जाती है, कि हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ पे यकीन रखते हैं कि अपनी बात कहना हर शख्स का हक है, इसका उसके नज़रियात से या उसके अकायद से कोई तल्लुक
1: नहीं। उसके अलावा देखिए नसर मलिक या बाशी कुरैशी या शौकत भाई, एक हमारी ज़ाती ज़िंदगी है जिसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ हमारी है, लेकिन जब हम रेडियो पे बैठते हैं तो ये तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए हम लोग करते हैं, हम कोई अपनी प्राइवेट बात तो नहीं करते।
0: बाबा जी का इस तरह से इस प्रोग्राम में रेडियो पे आना और अपना प्रोग्राम पेश करना, आप उनके प्रोग्राम सुनिए, उससे आपको मालूम होगा जो आबाद और जो सामयिक सिर्फ ये काम करते हैं कि आपकी नशरियात में से मनफी चीज़ें तलाश करने की कोशिश करें, हालांकि ऐसा होता नहीं है। उन्हें बाबा जी का सख्त गिर लहजा जो है और सख्त गिर अल्फाज जो हैं वो आप सुने तो आप समझेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन उनके उस मोहब्बत भरे जज्बे को आप मुस्तर नहीं कर सकते जो वो अपने प्रोग्रामों के जरिए अपनी बरादरी को यहाँ कम अज कम दैनमार्क में अपने सुनने वालों को आगाह करना चाहते थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।
1: नसर भाई हमारे पास टेलीफोन कॉल है, अगर आप
0: जी जरूर।
1: हाँ जी, कौन साहब है
3: जी? अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
3: हुमा आपको आवाज आ रही है?
4: जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आवाज आ रही है।
1: जी जी हुमा
4: जी, अस्सलाम वालेकुम जी सबको, मेरा सलाम और बाबा जी के हवाले से हमारी सोसाइटी का वो एसेट है तो बहुत बड़ा लॉस है, और मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी मेरा उनके साथ क्या रिश्ता था।
1: Please.
4: जो भी बातें हो रही हैं उन हवाले से, जैसे कि बाशी साहब ने जिक्र किया, शौकत भाई ने, नसर अंकल ने, ये सारी बहुत खूबसूरत बातें हैं, और मैं अपना शेयर ये करना चाहूँगी कि जी मेरा उनके साथ एक रिश्ता जो है वो एक शागिर्द और उस्ताद का था। बाबा जी का बहुत बड़ा एफर्ट इब्तदाई तालीम के हवाले से है डेनमार्क के बच्चों के लिए, और मैंने उनसे कुरान मजीद पढ़ना स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे कुरान सिखाना, मुझे भी याद है विस्तपोकर में हम रहते थे तो मस्जिद जो एक थी वो ऐसे सीढ़ियाँ नीचे उतर के हम जाते थे और वहाँ पर अंदर बैठ के बच्चों को वो कुरान मजीद पढ़ाते थे, तो मैंने 8.5 साल की उम्र में कुरान मजीद ख़त्म किया था, और क्रेडिट गोज़ टू बाबा जी, और ये अखबार में डेनमार्क के एक लोकल न्यूज़ में भी आया था कि मैंने इस यंग एज में कुरान मजीद पढ़ना उनसे सीखा, तो मैं

अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मोहित पीजादा इन वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 16 मई 2026 है, हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि यूं कहिए किसी हद तक ट्रबलिंग और डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, कराची से भी है, लाहौर से भी है, इस्लामाबाद से भी है, बनीगाला से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की नई बदलती हुई जो हिकमत अमली है चीन से, चीन की तरफ उससे भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक ईरान से भी है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरक्ची से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी है, कुछ अफगानिस्तान से भी है, कुछ मुस्लिम दुनिया के, खास करके पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमानों के दरमियान जो एक छुपी हुई इंतहा पसंदी पाई जाती है, जिसके नतीजे में बाकी सारी दुनिया को हर वक्त एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कहते रहते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी एक एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रैंड है वो कभी भी डायग्नोज नहीं हो पाती। कुछ जिक्र, कुछ एनालिसिस और कुछ कॉमेंट उसके हवाले से भी है। अब मैं बात का आगाज करता हूँ कि आप में से वो तमाम लोग जो मुझे गुज़िश्ता कई दिनों से मसलसल देख रहे हैं और आपने हर प्रोग्राम मेरा देखा है, आपको ये एहसास होगा कि इसी टाइम पीरियड में जो मेरे वीलॉग्स आप देखते रहे, पाकिस्तान के अंदर अनमोल पिंकी के नाम से एक स्कैंडल, अनमोल पिंकी कुकेन क्वीन के नाम से मसलसल एक डिस्कशन हो रही है। शायद ही पाकिस्तान का कोई उर्दू या अंग्रेज़ी का अखबार, जरीदा, कोई टेलीविजन चैनल का प्रोग्राम, कोई पॉडकास्ट, कोई यूट्यूब प्रोग्राम ऐसा ना बचा हो जिसने एक या दो दफ़ा अनमोल पिंकी के किस्से को, उसके अफेयर को मजे ले लेके, चस्के ले लेके उसे डिस्कस ना किया हो। तमाम किस्से, बाज लोगों ने बिलावल जरदारी भुट्टो से उनका सिलसिला जो है वो जाके मिला दिया, कभी किस सियासतदान से, कभी किस सियासतदान से, लेकिन मैंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूं कि मुझे भी अनमोल पिंकी की जो पूरा अफेयर है इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा। और उसकी वजह यह हुई कि मैंने पहले तो 3-4 दिन पहले एक अनमोल पिंकी की कैसी वीडियो देखी थी जिसमें अनमोल पिंकी खरामा कराची की किसी अदालत के अंदर, पुलिस, ऐसा लगता था कि वो अदालत को भी कंट्रोल करती हैं, पुलिस स्टेशन भी उनके नीचे है और अपेरेंटली पुलिस उनको बहुत ही इज्जत से, बहुत ही डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही थी, जिसमें अनमोल पिंकी ने एक बड़ा हल्का सा एक मास्क लगाया हुआ था जो कि कोविड के दिनों की याद दिलाता है और बहुत वो स्मार्ट लग रही थी, ऐसा लगता था कि बॉलीवुड का कोई सीन है। तो वो क्लिप मैंने देखा, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोई कमेंट नहीं किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया। लेकिन अब मैंने एक ऐसा क्लिप उनका देखा अब से 3 घंटे पहले जो बड़ा डिस्टर्बिंग था, जिसमें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल थी, जिसमें अनमोल पिंकी को अदालत की के एक अहाते में उन्हें पुलिस धक्के दे दे के मजबूर कर रही थी कि वो जो कुछ कहना चाहती है वो ना कह सके। उसके मुंह पे एक ढाटा या कपड़ा, जो एक चादर सी थी, उसको बार बार उसके ऊपर फेंकने की कोशिश की जा रही थी। और वो अगर आप सीन देखें जिसमें पुलिस अनमोल पिंकी को कहने नहीं दे रही जो वो कहना चाहती है, तो आपको इससे एहसास होता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत या माशरा है, ये कितना जाबराना है, कितना ज़ालिमाना है, ये कितना सफाकाना है, ये कितना बेरहम है। वो सीन देखने वाला सीन है, वो आप में से आपको मिल जाएगा ट्विटर पर, मैंने भी उसको ट्वीट किया हुआ। वो क्या कह रही है, अनमोल पिंकी कह रही है कि मुझे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे मारा है, इन्होंने मुझे लाहौर से 22 दिन पहले उठाया था और ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और इन्होंने मुझसे जाली बयानात लिए। तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि जाली बयानात किस हवाले से लिए हैं, फिर आपके कानों में ये सदा उसकी आवाज़ आती है कि ये मुझसे ये बयान इन्होंने ये लिखवाए हैं, स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं कि बनीगाला में मैं किसी शख्स को पता नहीं क्या सप्लाई करती रही। अब जहन में रहे कि इसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि ये कोकेन सप्लाई करती थी, ये मास्टर थी, इसको केमिस्ट्री बड़ी पता थी, ये कैटामीन जो एक इंजेक्शन होता है जिसको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कहते हैं, मुमकिन बच्चों की सर्जरी में पता नहीं अब भी इस्तेमाल होता है कि नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन अब से चंद बरस पहले या चंद दहाइयां

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने, पैर पैरां नाल टुरदे वेखे, हाथ हाथां नाल जुड़दे वेखे, इक्को ही मां दे जम्मे पुत्तर इक दूजे तो सड़दे वेखे, डंगर लै गए बाजी ते बंदे रोटी पिछे लड़दे वेखे, सलूक ना रखन आपस विच जेड़े, हजारा होवन पर हरदे वेखे, कामिल मुर्शिद लंघ जावे जिधरों, बंदे रब रब करदे वेखे, बंदे रब रब करदे वेखे। दियां संभालन इज्जतां नूं ते पुत्र वारस खजानिया दे, दौलत रखी गर्दे विच इज्जतां दित्तियां हथ बिगानिया दे, सदा किसे नी इत्थे रहना, सब दा दूर ठिकाना, तन इक पिंजरा रूह इक पंछी, ते पंछी ने उड़ जाना।

ले शाह असा रस्ते वटे असा आपे पै गए फा मर के साडा साह ना मुके सानू ऐसी मौत दा चा। जाता दा तू मान करी ना कर दे सब भुलेखे बुल्ले वर्गे कंजरा दे कर सौदा ढोंदे वेखे चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पहचाने ते ना कोई सानू मन्ने जा जा वड़ना है मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं एवें रोज शैतान ना लड़ना है कदी नफ्स अपने ना लड़े ही नहीं बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 मई पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 169। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर आपके सामने कराची से रखते हैं, जहां से एक और महारानी जो है उनका इंकशाफ हुआ है। आपको याद होगा कि कल आपके सामने खबर भी रखी थी और एक वीडियो भी, जिसमें FIA के अहलकारों ने बल्कि जत्थे ने एक छापा मारा था। कहने को तो वो छापा था लेकिन असल में वो एक हमला था, हल्ला ही बोला था। वो जो उन्होंने हमला किया था उसमें सुनार जो थे उनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे। मकसद क्या था? मकसद ये बताया गया कि चेक करना था कि उनके पास जो सारा माल है वो असली है, मतलब कानूनी तौर पर है, कस्टम पेड है, सोना कोई ऐसा तो नहीं जो स्मगल्ड है। बिल्कुल ठीक है, कानूनी तौर पर आपका ये हक है, लेकिन कानून हाथ में लेना आपका हक नहीं है। थप्पड़ रसीद करना आपका ये काम नहीं है। वहां पर एक ऑफिसर थी जो इस सारे काम की इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अब जब लोगों ने इसके ऊपर लान तान की, जब उसकी वीडियो आई, वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि फिर YouTube की पॉलिसी में जब तशद्दद होता, थप्पड़ वगैरह दिखाए जाते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर वो वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब जब वो थप्पड़ मारने की इंस्ट्रक्शन इन मोहतरमा ने दी तो सभी ने सर्च करना शुरू किया और लान तान भी किया कि ये कौन है जो थप्पड़ मरवाने के अहकाम दे रही है, लेकिन इनका नाम बाहर नहीं आ रहा था। FIA और पूरा सिस्टम इनके नाम को छुपा रहा था। अब सोशल मीडिया पर इनकी आइडेंटिटी को रिवील किया गया है और पता चला है कि इनका नाम रुबाब काजी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड इनका निकला है और पता चला है कि इनके शौहर जो है उनका नाम आफताब काजी है, वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। इनके एक भाई भी ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम मुनसिफ काजी है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये FIA की ऑफिसर नहीं है, ये असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ऑफिसर हैं और वहां से डेपुटेशन पर ये FIA में आई हुई है ना कमाल। और सखर की कोई फैमिली है जिससे ये बिलोंग करती हैं। अब ये जो सारी सूरत हाल जब इमर्ज हुई है तो समझ आती है कि कहां से इन्होंने इतनी ताकत ली जिसकी वजह से इनका नाम महकमे वाले सामने नहीं आने दे रहे थे और इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था जो वहां खड़े होकर थप्पड़ मरवा रही थी। अच्छा, ये कोई अनोखा काम नहीं है। आजकल आपने देखा कि खवातीन जो अफसरान हैं उनसे ये काम करवाया जाता है। मुझे नहीं पता ये चौधरी साहब की नई इजाद है या शरीफ खानदान की। आपने देखा है कि पंजाब के अंदर भी मरियम नवाज साहबा ने खुद और अपने इर्द गिर्द खवातीन को इकट्ठा किया है। जो इल्जाम है करप्शन करने के, वो मरियम औरंगजेब के ऊपर सख्त किस्म के इल्जाम लग रहे हैं आजकल। कहा यह जाता है या इल्जाम ये लगाया जाता है कि मरियम नवाज की जगह पर सारी मार धाड़ वो कर रही है। अब जाहिर है किसी के पास सबूत तो नहीं है, लोग ये कहते हैं या लोगों का ये तासुर है। उसके बाद ये भी बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी तासुर लोगों का यही है कि बहुत ज्यादा मार धाड़ हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप कोई बात करेंगे तो वो खवातीन होंगी। ऐसे ही चौधरी साहब ने, याद कीजिए 9 मई के जितने भी मुकदमात थे उसमें खवातीन जो पुलिस ऑफिसर थीं उन्हें आगे करके, एक वो मैडम रोलेक्स थी आप सबको याद होगा, अनूश साहबा जो SP थी उनको आगे किया गया और उन्होंने झूठ बोला कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है उनके पास 9 मई की, और बाद में आपने देखा वो सब झूठ था। अब ये जो तमाम खवातीन अफसरान हैं जहां जहां उनको इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आपने एक वो ASP साहबा थी जिनको SP की पोस्टिंग दी हुई थी, मुझे उनका नाम भूल गया, वो भी शायद मोहसिन नकवी साहब की रिलेटिव हैं, उनके भी आपने हाल देख लिए थे जिस तरीके से उन्होंने एक लाहौर के एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर को, मेडिकल डॉक्टर को बुला के हरास किया और उन्हें हरास करने के बाद कहा कि फलां शख्स से आपने जो पैसे लिए हैं वो वापस करें, गालिबन आंख की सर्जरी का कोई मामला था। तो मेरा ख्याल शहरबानो उनका नाम है या शेरबानो उनका नाम है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, शहरबानो है या शेरबानो नकवी या कुछ ऐसा उनका नाम है। अब ये एक नया पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने देखा ना कि नए से नए ट्रेंड हैं, जैसे जब तक जियाउल हक थे तो हमारे जो जर्नल्स थे

तो उनसे सारा जुल्म करवाओ, और अगर कोई उनके ऊपर बात करेगा तो फौरन औरत कार्ड निकल आएगा। अब ये जो रुबाब काजी साहबा है, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है लोगों के सामने, देखते हैं इनके खिलाफ वैसे एक्शन तो कोई नहीं होना जाहिर है, क्या होना है, यहां पर तो लोगों को मार दिया जाता है। जब वीगो डाले आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ला के लोगों को उठाएंगे और मारदाड़ करेंगे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सीसीडी वाले लोगों के जाली पुलिस मुकाबले करेंगे, तो फिर आवे का आवा बिगड़ जाता है। एफआईए वाले कहते हैं दो थप्पड़ हमने भी मार दिए तो क्या हुआ। कल ही की वीडियो है, एयरपोर्ट के ऊपर एक खातून जो सफर कर रही थी, उन्होंने कस्टम या गालिबन इन्हीं की एफआईए की खातून जहां नौकरी कर रही थी वहां कोई एहलकार, उनसे जाके पैसेंजर खातून ने कहा कि बाथरूम में कोई टिश्यू पेपर नहीं है शायद, तो मुझे टिश्यू पेपर दे दीजिए। उसके ऊपर उन्होंने उसको थप्पड़ रिसीव कर दिया कि मैं आपको टिश्यू पेपर देने वाली लगती हूं, और वहां पर एक रेसलिंग जैसी लड़ाई हुई, उसकी वीडियो भी सामने आई। लेकिन चंद दिन पुरानी बात है जब इकरारुल हसन एयरपोर्ट के ऊपर गालियां दे रहे थे, आप सबने वो सब कुछ देखा, लेकिन क्योंकि पता था कि उनके पीछे चौधरी खड़ा है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो लगता यही है कि रुबाब काजी साहबा ने पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर दबा के चौधरी साहब के अहकाम बजा लाई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल डॉक्टर अनम फातिमा, आप सबको पता है इस्लामाबाद के अंदर उनके पास चार ओहदे हैं, एक नहीं है, चार चार ओहदे हैं, और वो भी ज़बरदस्ती लोगों के घर खाली करवा रही हैं, लोगों के ऊपर इसी तरीके से तशद्दद और बाकी सख्ती करने का उनकी तरफ से भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ साथ याद कीजिए ये भी पता चल रहा है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर थी गुजरांवाला के अंदर, जब आर्मी चीफ आज के और उस वक्त के कोर कमांडर गुजरांवाला आसिम मुनीर वहां पर कोर कमांडर थे। तो इस तरह से हैंडपिक किया जाता है जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनको, और फिर उनसे जैसे भी काम करवाने होते हैं वो करवाए जाते हैं और वो करते हैं, और अगर खवातीन वो काम करें तो फिर ज़्यादा, बल्कि उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है क्योंकि कोई तनकीद भी नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ शाहज़ेब जलानी साहब ने डॉन न्यूज़ के ऊपर बात करते हुए ये बताया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ 70 बच्चे पास हुए हैं, हज़ारों बच्चे फेल हुए हैं, हजारों बच्चों ने एग्जाम दिए, सिर्फ 70 बच्चे पास हुए हैं, और ये जो 70 बच्चे हैं ये सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और बड़े लोगों के बच्चे हैं, इनमें आम लोगों के बच्चे उस तादाद में नहीं है। वो कहते हैं कि मेरिट को उड़ा के रख दिया है, अंधेर नगरी है, ना अदलिया के अंदर को मेरिट है, ना किसी और इदारे के अंदर रह गया, ना अदलिया को फिक्र है। अब जब इन्हीं लोगों के बच्चे आके सिविल सर्विसेज में आगे ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि आगे मामला जो है वो किस तरफ लेकर जाया जाएगा। अगली खबर आपके पास सामने रखते हैं, आईएमएफ से रिलेटेड है। शहबाज राणा ये कहते हैं कि आईएमएफ ने जो हमारा अगला बजट है वो 2665 अरब का दिया है, ये वाला जो बजट आ रहा है वो 2560 अरब का है, और उन्होंने कहा है कि 101 अरब का इजाफा किया गया है हमारे डिफेंस बजट में। मीन आईएमएफ ने इजाजत दे दी है पाकिस्तान को कि आप डिफेंस बजट में 101 अरब का इजाफा कर लें। अच्छा, अब जो फंसी मंगी हैं, वैसे तो ये ब्लूमबर्ग में लिखते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी अक्सर चौधरी साहब के हक में ही लिखते हैं, मतलब है तो ब्लूमबर्ग आला इदारा, आपने ये भी जहन में रखना है कि ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स के इससे पहले गालिबन उनका नाम सलमान था कि क्या था मुझे याद नहीं, अब जो उनके क्रॉस्पॉन्डेंट थे पाकिस्तान के लिए वो अंदर से पूरे के पूरे पटवारी थे। वो खबरें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते थे लेकिन आप ऐसे ही समझें कि कोई पटवारी लिखता था। अब लोग ये समझते थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है तो ये अथेंटिक ही होगी, लेकिन क्योंकि एक पटवारी उस खबर को फाइल करता था या पटवारी नमाज जो उनका तासर था कि वो एक पटवारी हैं, तो अक्सर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरीज होती थी वो वन साइडेड होती थी या उनके अंदर जो पूरा कॉन्टेक्स्ट होता था किसी चीज़ का वो नहीं होता था, बल्कि एक प्रीटेक्स्ट के ऊपर, एक अपनी सोची समझी जाली कहानी के ऊपर अक्सर कहानियां जो हैं वो बिल्ड करके शाया कर दी जाती थी। ऐसी सूरतयाल फसी मंगी साहब भी अक्सर करते हैं ब्लूमबर्ग के अंदर, वो भी प्रो फील्ड मार्शल, प्रो पाकिस्तानी मिलिट्री, प्रो जो मिलिट्री जर्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो उनके इंटरेस्ट है, और प्रो पीएमएलएन अक्सर स्टोरीज फाइल करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ गिवन अ रेवेन्यू टारगेट, आईएमएफ ने पाकिस्तान को अब नया जो रेवेन्यू टारगेट है वो 61.3 बिलियन डॉलर का दिया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने पेट्रोलियम के ऊपर, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लेना है वो 1.73 खरब
तकरीबन 2 खरब रुपया या 2.25 खरब रुपया जो है वो आपने अगले साल पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो

0: टैक्स देना है, इस साल से दुगना आप कह लीजिए। इसका मतलब यह है कि आप तेल की कीमतें अगर इस साल से आपने दुगना टैक्स देना है तो खुद ही जरब और तकसीम दे लीजिए कि आपने कितना ज्यादा महंगा तेल अगले सालों में खरीदना है। वो कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोलियम के ऊपर जो आपको लेवी और टैक्स देने पड़ेंगे वो अब $18 बिलियन के देने पड़ेंगे अगले साल में। इससे लग ही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान आ रहा है, मतलब तूफान तो पहले ही है, अब आपने उसका लफ्ज इस्तेमाल करना है कि आगे क्या आ रहा है। जो अभी है उसको भूल जाइए, क्योंकि ये जो फसी मंगी साहब ने ब्लूमबर्ग में खबर, मैंने ये बताया कि ये अमूमी तौर पर प्रो मिलिट्री जर्नल्स खबर लगाते हैं, नून लीग के प्रो खबर लगाते हैं, और अगर ये कह रहे हैं कि दुगना तकरीबन जो है वो अगली दफा पेट्रोलियम के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लेना IMF के साथ ये तय हुआ है, तो फिर आप कानों को हाथ लगा लें, आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो तमाम कसरे और वट जो है वो निकाल के रख देगी, और मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे और कैसे अफोर्ड करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ शहबाज राणा की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो काम करने वाले, जिन लोगों को काम चाहिए, कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब जिनमें कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, उन तमाम की तादाद 13 करोड़ है, और इसके लिए अगर आपने इन तमाम लोगों को नौकरियां देनी है तो 7% कम अज कम ग्रोथ रेट होना चाहिए, तो तब जाके आप 13 करोड़ लोग जिन्हें नौकरियां चाहिए उनको नौकरियां दे सकते हैं। वो कहते हैं 2050 तक ये जो 13 करोड़ लोगों को नौकरियां इस वक्त चाहिए ये डबल हो जाएगा, 25 करोड़ लोग होंगे पाकिस्तान में ऐसे जिन्हें नौकरियां चाहिए होंगी। अगर हमने उन तमाम लोगों को रोजगार देना है तो अगले 24 सालों के अंदर, आप ये समझ लीजिए, जो कि आप कोई बहुत लंबी बात नहीं है, हमें हर साल 7% के ऊपर ग्रोथ रेट अपना रखना पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत में 6% प्लस का ग्रोथ रेट था, जिसको माइनस में लाके खड़ा कर दिया, मीन प्लस में भी नहीं रहने दिया, पहले 2 साल तो इन्होंने माइनस में रखा, और ये हमारे मिलिट्री जर्नल्स का कारनामा है। लेकिन जैसे पाकिस्तान तोड़ने का किसी ने, जो उसका वजन था वो आज तक नहीं उठाया, उसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, इस तबाही की भी जिम्मेदारी जो है वो कोई कबूल करने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी टोपी उसके सर होगी, उसकी टोपी उसके सर होगी, ये कोई मानेगा नहीं कि ये हमारी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद गुज़श्ता 2 साल में कोई 49 खरब का इस्तस्ना बड़ी कंपनियों को दिया गया है। इस्तस्ना एक तो फील्ड मार्शल को मिला हुआ है, आसिफ अली जरदारी को मिला हुआ है, इस्तस्ना होता है कोई पूछगिछ नहीं या रायत। तो 49 खरब, ये पिछले दिनों अखबार की गालिबन डॉन की भी स्टोरी थी। तो ये जो 49 मतलब 50 ट्रिलियन रुपीस, ये छोटी अमाउंट नहीं है, 50 ट्रिलियन की जो इस्तस्ना दी गई है ये बड़ी बड़ी कंपनीज को दी गई है, और वो कंपनीज इन्हीं की हैं, जैसे शुगर माफिया को दी जाती है, फर्टिलाइजर को दी जाती है, या वो चौधरी की कंपनीज हैं, या वो बड़े बड़े फ्यूडल्स की, या बड़े बड़े बिजनेसमैनों के वो काम हैं, या सियासतदानों के हैं, मतलब पाकिस्तान की अशराफिया 50 खरब की सब्सिडी खा गई है, 50 खरब का इस्तस्ना खा गई है, गरीब को कुछ नहीं मिला, जो उसके पास हेल्थ कार्ड था वो भी उसे छीन लिया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आपके सामने हम ये बताते हैं, तो ये चंद गरीब लोग हैं जिनकी सूरत हाल है, कोई अंगूठी बेच रहा है, तो कोई रिक्शे वाला कह रहा है कि मेरा कुछ पूरा नहीं हुआ, तो कोई और कहानी सुना रहा है। ये 2-3 लोगों की छोटी छोटी कहानियां सुनिए कि इस वक्त गुर्बत से लोग कितने तंग हैं और किन हालात में पहुंचे हुए हैं, फिर आगे चल के आपको ये जो अशराफिया है इनके हालात दिखाते हैं। ये जरा कुछ गरीबों की, क्योंकि इनकी आवाज हमेशा दब जाती है, इनको कवरेज नहीं मिलती, इनकी बात कोई आगे पहुंचाने वाला नहीं होता, इनके ऊपर कोई सर्च लाइट नहीं डालता कि इनको मेन स्ट्रीम के अंदर ला के डिस्कस किया जाए, तो इनकी बात जरा सुनिए।
1: इमरान खान सही कह के गया था, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर सकते हैं।
2: बर्दाश्त हो रहे हैं?
1: नहीं हो रहा ना बर्दाश्त,
2: कब तक बर्दाश्त, इस हालत में रहेंगे?
1: बस
2: कर भी रहे, हो भी नहीं रहा।
1: मार दिया हुआ इन्होंने, हमें मार दिया हुआ है हमारे।
3: ये बिजली का बिल आप देने के लिए
4: अंगूठी बेचने आए?
3: अंगूठी बेचने आए
5: और भी अखराज आते हैं घर के, मेहनत करने आते, काम ही नहीं है, मार्केटों में फारिग बैठे हुए हम तो।
6: कल 15 तारीख है, यकीन जानो 12,000 का किराया, खुदा की कसम नहीं है, परेशान हो गए, इस महीने का किराया नहीं निकला, इतना परेशान। ये देखो मेरे पास, ये मैं घर से प्याज का मसाला बना के लेके आया हूँ, 2 टाइम मैंने खाया, पहले मैं होटल से रोटी खा लिया करता था तो 150-200-150 रुपया मैं खर्च कर लिया करता था। काफी दिनों से ये प्याज का मसाला है, इसके साथ मैंने एक एक नान लेके खाया है।
4: ये क्या 804, ये क्या चक्कर है
7: 804? इससे तकलीफ बड़े लोगों में होगी, मैं इसलिए बताना नहीं चाहता। चोर डाला हो गया जी, महंगाई नहीं है, 2000 माल है, और 2000 मैं इंचार्ज हूँ फैसलाबाद स्टैंड पे, मेरा नहीं बन रहा, ये लोग कह रहे हमारा बन रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा।
1: और गरीब आदमी रोटी से आजिज हो गया है, पानी से आजिज हो गया है, बिजली वो नहीं मिल रही, गैस वो नहीं मिल रही, 500 रुपए किलो अब ये नए लेवी लगाने लगे हैं।
4: आपने 2000 कमाया,
1: 2000 ये 300 रुपए कमाया हुआ है, कौन कहता है, झूठ बोली जाती है जितने मर्जी है। देखे इन्होंने तो घर की रोटियां छीन ली है,
4: लेकिन अब महंगाई तो कंट्रोल की है इन्होंने।
1: कौन सी महंगाई कंट्रोल की है, आलू 40 रुपए किलो हो गए हैं, 20 रुपए किलो बिक रहे थे रमजान में, करेले 250 रुपए किलो है, छोटा गोश्त 3500 रुपए किलो है, ये महंगाई कंट्रोल है। हम लोग तो चलो मजदूरी कर रहे हैं, कभी खा ली कभी ना खाई, गुजारा कर लेते हैं।
4: 216 रुपए टैक्स है पेट्रोल में, टैक्स 212 रुपए, सॉरी 212 रुपए टैक्स है। इमरान खान के दौर में 150 रुपए पेट्रोल था, 150 रुपए पेट्रोल था,
8: बेड़ा कर रहा थी इमरान खान ने,
4: बेड़ा कर ना ने किया है जो 40 साल पहले, तो फिर आके
1: महंगाई तो इस दौर में हुई है ना, हम तो खुद नून लिखे।
4: अच्छा तुम नहीं, तुम बीमार हो जाओगे, किसे जाओगे
8: हॉस्पिटल,
4: चेहरे लंदन वाले पाकिस्तान वाले, ये मेरे भाई 3 दिन स्ट्रेचर पे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं 1000 रुपया दे दो, हम आपको बेड दे देते हैं। मेरे 1 महीने से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 1 महीने 21-22 दिन हो गए, मैं आपको कॉल दिखाता हूँ, स्कूल से कॉल आई है, तो मेरे घर में बिजली नहीं है, पंखे बंद है, मैं कैसे अपने घर में रहूँ, मेरा मीटर उतरा हुआ है, मैं कैसे रहूँ। आज 22वां दिन है, स्कूल से मैडम का फोन आ गया, मैंने कहा मैडम मम्मी ने बीट दबे, ये मैं शुगर का मरीज हो गया हूँ, आप कह रहे हैं ना 1 पैसा इन्होंने बिजली सस्ती की है, ये 20-22 रुपए की गोली है, मैं पूरा महीना बिजली एक पैसा बचाऊं तो एक गोली नहीं आनी इसकी।
0: सुन ली आपने, तो ये सूरत हाल है इस वक्त गरीब की इस मुल्क के अंदर। लेकिन आगे सुनिएगा, डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा है कि FBR के अंदर 100 ऐसे अफसरान हैं, जी हाँ 100 ऐसे अफसरान हैं जिनकी टोटल मालियत जो है वो $100 मिलियन से ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी सराइयत की हुई है। ऊपर हमने आपको बताया कि 50 खरब 50 ट्रिलियन प्रिसाइजली 49 ट्रिलियन जो है वो सब्सिडी ले गई अशराफिया, तो साथ FBR के अफसरान की हालत भी देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके सामने हम सूरतयाल रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक वीडियो देखिए, ये वो वीडियो है जो एक फौजी अफसर हैं या उनके कोई साहबजादे हैं उन्होंने लगाई है, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई आर्मी के ऑफिसर हैं, इन्होंने जो वीडियो लगाई उस पर जाहिर है वो डिफरेंट किस्म की जो अयाशियां उनको करने को मिल रही हैं फौजी सेटअप के अंदर वो दिखा रहे हैं, जिसमें गोल्फ क्लब्स हैं, जिसमें बाकी बहुत सारा ऐसा सूरत हाल है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यो हनी सिंह का गाना लगाया हुआ है, जो हम आपको कॉपीराइट्स की वजह से नहीं सुना सकेंगे, लेकिन ये गाना आपको बता देते हैं अगर आप सर्च करके देखना चाहें। उसके जो कुछ बोल हैं, पूरे तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो कहता है कि आई एम मदर, आगे एफ वर्ड है, मिलियनर, डर्टी मनी सुपर पावर्स, पुल अप लाइक अ शेख, शोफर्ड कार्स, टेलर्ड सूट्स। तो ये अयाशी, ये ब्रैग, ये शेखी बखेर रहे हैं ये मिलिट्री के अफसर, जो अपना लाइफस्टाइल, लग्जरी प्रोटोकॉल, अलीट क्लब्स, एक्सपेंसिव कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स और ये सब कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें फील्ड मार्शल भी और DGISPR भी बताते हैं कि ये गरीब की रिप्रेजेंटेटिव फौज है। वो हमें ये बताते हैं कि ये अल्लाह की फौज है, गरीब की रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें कोई शक नहीं, जो आम फौजी है वो तो ऐसा ही है, लेकिन ये जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, इनकी जो औलादे हैं और जिस तरह के ये वीडियोस, ये हमने कहीं से खुद नहीं प्रोड्यूस की, ये उन्हीं की वीडियो है, ये इस वक्त पड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जाकर देख लीजिए। ये जो गाने के आपके सामने बोल रखे हैं, जो मैं पूरे रख नहीं सकता, जिसमें गाली गलौज है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वो वीडियो भी लगी हुई है। एक तरफ अशराफिया, दूसरी तरफ आपको लगेगा कि सिर्फ ये फौजी अफसरान करते हैं, नहीं, अशराफिया का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये आगे देख लीजिए, ये एक ब्यूरोक्रेट है कोई, ये भाग रहे हैं, साथ इनकी छोटी बेटी नन्ही सी, जो हमारी भी बेटी की तरह है, अल्लाह इसकी किस्मत अच्छी करे, ये बच्ची भाग रही है। लेकिन पीछे गौर कीजिए, अब इस बेटी को क्या सिखा रहा है बाप कि ये जो कौम का इस वक्त पेट्रोल जलाना है, ये वीडियो चंद महीने पुरानी है, ये जहन में रखिएगा, ये ना कोई समझ ले कि हम झूठ बोल रहे हैं कि आज की है, तो डिस्क्लेमर ये कि चंद महीने पुरानी वीडियो है, लेकिन आपको सिर्फ बेहसी दिखा रहे हैं कि पीछे जरा गाड़ियां और प्रोटोकॉल देखिए, वो साथ साथ भाग रहा है और ये बाप बेटी भाग रहे हैं, कितना आवाम का पैसा जाया कर रहे हैं और उसके अंदर कितने सिक्योरिटी के लोग बैठे हैं। ये बच्ची तो फिर इंटाइटल्ड होगी ना, जैसे मरियम नवाज अपने आप को इंटाइटल फील करती है और उसने 1300 करोड़ का जहाज ले लिया और उसको लगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूं। ये बच्ची भी कल को कुछ भी करेगी, वो हो सकता है रुबाब काजी की तरह लोगों के मुंह पर थप्पड़ रसीद करवाए या कुछ भी करे। तो ऐसे अशराफिया अपने बच्चों को इंटाइटलमेंट फील करवाते हैं और उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि आप लोग इंटाइटल्ड हैं। आगे चलते हैं, अब अशराफिया की बात। अब जहां तालीम की कमी है, जहां पर नया नया पैसा आया है, वो भले बेचारे लोअर मिडिल क्लास वाले हों, शक्ल से लगती है हमारी बहन कोई ऐसी हो सकता है, शक्ल मीन मैं उनकी जाहरी शक्ल की बात नहीं कर रहा, जो ओवरऑल अपीयरेंस है उससे लग रहा है कि कोई लोअर मिडिल क्लास से या तो पैसे आ गए हैं पहली दफा या कोई और मामला है, उनकी जरा हालत चेक कीजिए। उन्होंने भी छोटी बच्ची साथ बिठाई हुई है। हम सारी उम्र यही पढ़ते सुनते रहे कि मुजरों में जो तवायफें होती थी उनके ऊपर पैसे फेंके जाते थे, अब ये नया रवाज आ गया है, छोटे बच्चों के ऊपर पैसे फेंके जाते हैं, अपने घर की औरतों के ऊपर फेंके जाते हैं, माओं के ऊपर और बहनों के ऊपर पैसे फेंके जाते हैं। अब ये जो भी कोई खातून है, मैं यही कह सकता हूं तालीम की कमी है, इन्हें ये उस बच्ची के सर को पहले पैसे लगा रही हैं, ये सर को लगाए जाते हैं सदके के लिए गालिबन। अब मुझे समझ नहीं कि यहां आगे सदका लेने वाला कौन है जो आप अपनी बच्ची के सर को लगा के सदका दे रही हैं, और फिर वो जो सिंगर हैं उनके सर को भी लगा रही हैं, वो जो बैठी गा रही हैं आगे सिंगर उनके सर को भी लगा रही हैं, अपनी बच्ची के भी लगा रही हैं फिर सिंगर के सर को भी लगा रही हैं, और बिल्कुल जाहिलों की तरह वो पैसे फेंक रही हैं। अब इन्हें कुछ नहीं पता कि ये ठीक कर रही हैं या गलत कर रही हैं, उन्होंने रील्स में ये होते हुए देखा है और वो भी कर रही हैं, जो कुछ उन्होंने रील्स में होते हुए देखा है वो भी कर रही हैं, और उन्हें लगता है कि यही ठीक है और यही जरा फैशन में इन है और मैं बड़ी यो लगूंगी, बिल्कुल यो हनी सिंह की तरह की या उनके गानों की तरह की, मैं बिल्कुल बड़ी यो लगूंगी इसलिए मुझे ये करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको समझ भी आएगी जो बात हम समझा रहे हैं, क्योंकि वो वहां शऊर की वाकई बहुत कमी लगती है, ये जो खातून है बेचारी जो कर रही हैं, तालीम की और शऊर की खासी कमी लगती है, लेकिन ये भी आजकल काम जो है वो आम हुआ हुआ है। दूसरी तरफ आपको हमने गुरबा की कुछ बातें सुनवाई थी, उससे आप खुद समझ लीजिए कि पाकिस्तान में ये कितना बड़ा एक डिफरेंस है। साथ ही हुकूमत का फैसला देख लीजिए, उन्होंने जो जेट फ्यूल है वो सस्ता कर दिया है और उसकी कीमत 111 रुपए 44 पैसे फी लीटर कम करके नई कीमत 320 रुपए 32 पैसे।
8: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई